0: आज मुसीबत हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार हलवा
1: बाबू जी हलवा।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो।
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज किसे हो गई आंखें, आज किसे हो गई आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: हार हार हार ओ राजा हार हार हार ओ राजा हार हार हार आज किसी पे हो गई आंख आज किसी पे हो गई आंख चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार
1: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हिच हिच हिच की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए बिराटा डी

प्रयाग न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत बित की जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

चला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता जी।

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला सजो जो सजो तू, दिला दिला सजो जो सजो तू।

राजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

बेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिटकी बिटकी जाए। दिला ता दिला।

आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए।

0: होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
0: किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए
1: दिला दिला चजो जो चजो चू दिला दिला चजो दिला चजो चू दिला दिला अट दिला अट दिला अट

आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बितकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा टडा डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा टडा डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिस्की बिस्की जाए। दिलाता दिलाता

अरे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला ता दिला ता जो जो जो जो दिला दिला ता दिला ता जो जो।

0: फरियाद करते करते पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले बाजा,
1: पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले बाजा,
0: अजमेर वाले बाजा।

दा मगर तुझ सा न पाया कोई। अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे।

0: फिर जो होगा कल ही देखा जाएगा। पर जीने वालों ले लो जीने का मजा।
1: फिर जो होगा।

खुशी सब कुछ तुम्हारे हाथ है। जो खड़ी है ये जवानी का नशा जीने वाला।